हर प्रगास प्रचंड प्रगटयो अंधकार विनाश। पवित्र अपवित्र है करन लागे मन ना पयो बेखाद। सीत मंद सुगंध चलयो सर्व थान समान। जहां साक्ष तहां लागयो तिल ना शंका मान। सुभाए अपाए जो निकट आवे सीत ताका जाए। आप पर का कश ना जाने सदा सह सुभाए। चरण सरन सनाथ एहो मन। रंग राते लाल गोपाल गो

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने। घट घट राम हियाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बूझै। ओह बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तो छूटै नाही। जो सिंचै तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै तित तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदाते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त्या दोत भया उठ चले। ज्यो ज्यो औद विहानियां, पाप करेंदण सर पर मुठे। अजरा ईल फड़े फड़ कुठे, दोजग पाए सृजनहार। लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई भैया बेबा। माल जोबन धन छोड़ वंजेसा, करण करीम ना जातो करता। तिल पीड़े जो कहानिया, खुश खुश लैंदा वस्त पराई। वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लभ पया खात अंदर। अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मरे फिर जम्मे। बहुत सजाए।

आपे पौन पाणी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना साकै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगण स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बणत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ माहे समाना,

द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अदली प्रभ आपे परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अभुल ना कबहू भुला आपे मेहर दया पदाता ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब सह दाता तिल ना तुमाई भरपुर धार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमया पार साचे सृजन हार मुरार जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिलै मेलाई है। ब्रह्मा विश्रम हेस द्वार है उबे सेवै लख्या पार है होर केती दर दिसै बिल लांदी मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी होर ना दिसै वेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कह बेनंती दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज ना जाना शोहर बिन पर नींद ना पाई है। अंतर अगन जलै पड़क हारे मनमुख तके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संघारे ज्ञान खड़गलै मन से लूजै मनसा मनै समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा मूर्त सूरत कर या पारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल बिगास हरे सर सुबर आत्म राम सिखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना परथाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सबाया जिन सिर आ तिन तंदे लाया सच्चे ऊपर अवरना दिसै साचे कीमत पाई है। एथे गोयलड़ा दिन चारे खेल तमाशा तंदू कारे बाजी खेल गए बाजी गार जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिलै सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीए सहि साजी है क्यों सुख पावै दूवै तीऐ निर्मल एक निरंजन दाता गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट कही सुख पाया मंत्र मैल ना काई है। जीव रसायन साचै राती हर प्रभ संगी पौ ना।

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण, अंदन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौतावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सिर दाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत नकाई, हाँ मैं

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरे प्रभ की ए, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चे ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद भावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है।

गुरमुख जपिया लाए त्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोवा, सब काल वसे आप प्रभ किया, नेचर एक आप अबनासी, सो नेचर जो तसै बुझाएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बो पाती, फिर सरलै सल समाएंदा। एक जाचक मंगे दान द्वारे, जा प्रभावे ता कृपा धारे, देहो दर्श जित मंत्र पतासै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवे, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै। कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा। जिथे औकट आए बंत है प्राणी, तिथे हर त्याई है सारंग पानी। जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा। वड्डा साहेब अगमा था, क्यों मिलिए प्रवे प्रवाह। काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कही है, बुरा भला दो संसार सही है। हौ मैं जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहि समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अति तो दासी। अनक रंग करै बो पाती, जो पिता पूत लाडाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जा ले मिलाई। गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरी सब धरना। जन नानक शरण पया हर द्वार, हर भावै लाज रखाएंदा। मारू सोलहे महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी सरवणी सुनिए। दूजी अवर ना जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा। आप चितारे अपना किया, आपे आपे आप प्रभथिया। आप उपाय रचियोन पासारा, आपे कटकट सारणा। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी।

तिसै प्राप्त होए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गहलीने अंध कुपते, विरले के ईसालका, आद अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सोई, भ्रम पव मिटिया साध संगते, दालद ना कोई कहलका, उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोर वाला, बासन मेट निबासन होई है, कलमर सगले जाल का, संता की है रीत निराली, पार ब्रह्म कर देख नाली, सा सा सा राधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आलका, जै देखा तै अंतर जामी, निमखना विसराओ प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीवै तेरे दासा, बन जल पूर्ण थालका, तत्ती वाव न ता कौ लागै, सिमरत नाम अंधन जागै, अनद बिनोद करे हसिमरन, तिस माया संग ना तालका, रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही, अपना नाम देह प्रप्रीतम, सुन बेनंती खालका, नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग रते तेरे दासिया पारे, तेरा रंग रते तुद जेहे, विरले के ही पालका, तिन की तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहूं बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, तिस जन का उपदेश निर्माल का, तुदविण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हम बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परमया नाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर कौ त्याई, नानक संत तेरा रंग राते, तू समरथ वडालका।

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन मैं चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणे कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुऐ नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलैही चीने, ताकि कीमत कहण न जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वड़दाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहण न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्डी।

पाई जे बहुत लोचाही आवै जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए इत तन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए मनमुख जगत निरतन है माया नू बिल लाए अंदन फिरदा सदा रहे भुख न कदे जाए सांत न कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चितवदा रहे सहसा कदे न जाए नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुख में रहे सच्चे महे समाए। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए खाना शब्द चंगियाईया जित खाद सदा तृप्त होए पहनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे ना होए सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जप हर हर नाम ते आई है हमें अज्ञान गवापै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो पय से हर अस्त्रापै हर कृपा धार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना विहाजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुरप्रसादी गुण पाईयान जिसनो नजर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ खरे परख खजाना पाईयान खोटिया नाही थाओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ अमृत का रस आया मन वसिया नाओ। श्लोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू होवे हो नाहे बुझो ज्ञानी बुझना एह अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाई है अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानी है जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाई है उतो मत तराहे नानक सो हंग हंसा जप जापो त्रिभवन तसै समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहा हमें दुबधा मार नानक नाम रते दुत्र तरे पौजल विखम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना पालनी मुठे अमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत शास्त्र ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किने ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते।

कहत कबीर सुनो रे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शिदर तरह रहाओ। जा की शोत जगत को लागे, ता पर तू ही टरे। नीचे उच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबै सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मानो, काम तेन बस जा के रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नव निध कर तलता कै। हर हर हरना जप सरसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान।

साच शब्द बिन कहो न छूट सो बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हो ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अगल पई होची शब्द सहज नहीं बूझिया। जन पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुरे अंध न सूझिया। रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी। प्रणमत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी। पहराओ महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी। नेत्री धुंद करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी। अंदले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस। पशु पहे कदे होहे नानी के अमृत का रस विरली पाया। सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल संताए अनको दर कर कबहू ना जानस। एको दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कह विचारा पहरो महला पहला सगली रैन सोबत गलफाही। दिन से जंजाल गवाया खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जग त्यो पाया मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊं दो कवल मन मुख मत होची। मन अंधा सिर तंदा काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन्ना मैं गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान में हूणे। शब्द विचार राम रस चाखिया नानक साच पतीणे। पहरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन भावै। आप मारे परंपर राता गुर की कार कमावै रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन आदि पुरखिया देसो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाह पावस गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटै गुरसेवा नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला हिरदय नाम सर्व तन तारण। गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते कृतार्थ सह ध्यान लिवलाई है। मन रे राम भगत चित लाई है। गुरमुख राम नाम जप हिरदय सह सेती कर जाई है रहाओ। परम भेद पौ कवो ना छूटस आवत जात ना जानी। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मोए बिन पानी। धंधा करत सगली पत खोवस भरम ना मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया मन ही ते मन मूवा। अंतर बाहर एको जानिया नानक अवर ना दूवा। पहरो महला पहला जगन होम पुन ता पूजा देह दुखी ने दुख सह। राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्म।

जंत जल थल महियल जतर कदर तू सर्ब जिया, गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग पहरो महला तीजा, चौप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ ते चल बहुत विकारा। रहाओ चारे वर्ण आख्या सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांड है कड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही काया कारा, घट वध को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। पैरो महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख तारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए। जागत रहे ना मुसे कोए, रहाओ सो जागे जे सतगुर मिले। पंच दूत ओ वसकत करे, सो जागे जो तत् विचारे। आप मरे अवरा ने मारे, सो जागे जो एको जाने। पर किरत छोड़े तत् पछाणे, चहो वरना विच जागे कोए। जमे काले ते छूटे सोए, कहत नानक जन जागे सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरो महला तीजा, जा कहो राख अपनी सरनाई। साचा लागे साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा, रहाओ एहो आकार तेरा है तारा। खिर मैं बिनसै करत ना लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया। गुर कृपा ते परम पद पाया, कहत नानक मार जी वाले सोए। ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए। पैरो महला तीजा, मैं कामण मेरा कंत करतार। जिहा कराए तिहा करी सिंगार, जात पावै ता करे भोग। तन मन साचे साहिब जोग, रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई। जाया पे वरत एको सोई, गुर प्रसादी प्रेम कसाई। मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पंत नानक करे क्या कोई। जिसनो आ मिलावे सोए। पैरो महला तीजा, सो मुन जे मन की दुबदा मारे। दुबदा मार ब्रह्म बिचारे, इस मन को कोई खोजो पाई। मन खोजत नाम नौनद पाई, रहाओ मूल मोह कर करते जगतो पाया। ममता लाए परम पुलाया, इस मन ते सब पिंड पुराना। मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा, कर्म होवै गुर कृपा करै। एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै। मन का स्वभाव सदा बैरागी, समय वसै अतीत अनरागी। कहत नानक जो जाने पे, ओ आद पुरख निरंजन दे। पैरो महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पवजल पारो तारनहारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सदी निभाए तेरे नाल, रहाओ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मन

गोविंद प्रीत संकाद को धारे, राम नाम शब्द विचारे, हर जीव अपनी कृपा तार, गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ। अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुरमे लावा होए, निज कर वसै सह सुभाए, गुरमुख नाम वसै मन आए, आपे वेखै वेखण हार, नानक नाम रखो और तार, पहरो महला तीजा। कल युग में राम नाम और तार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुर्लभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। राम नाम जन पहले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन्ने से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान, सो सेवहो जो कल रहया तार, नानक गुरमुख नाम प्यार, पहरो महला तीजा। कल युग में बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे, कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाओ। तन मन खोज कर मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया ते हो लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत ना काई, नानक गुरमुख हृदय राम नाम लिहो जमाई, पहरो महला तीजा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मन मुख रोग व्यापे, तृष्णा जलै अधकाई, मर मर जमै ठौर ना पावै, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हम मैं रोगी जग तो पाया, बिन शब्द रोग न जाई रहाओ। सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई, त्रै गुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई। एक आपे काढ़ लए प्रभ आपे, गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानो पाया, सुख वस्या मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वरतै, तिन्निज करवासा पाया, पूरे सतगुर कृपा किन्नी विचों आप गवाया। एक सकी सरकार एक, जिन ब्रह्मा बिसन रुद्रो पाया, नानक निचल साचा एको, ना ओह मरे ना जाया। पहरो महला तीजा, मनमुख दुखदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा, गुरमुख बुझै रोग गवावै, गुर शब्दी विचारा। हर जियो सतसंगत में लाए, नानक तिसनो देवड़ियाई, जो राम नाम चित लाए रहाओ। ममता काल सब रोग व्यापे, तिन जमकी है सिरकारा, गुरमुख प्राणी जम नेण ना आवै, जिन हर राख्या और तारा। जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता, से जग में काहे आया, गुर की सेवा कदे ना कीनी, बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी, सतगुर सेवा लाए, जो इच्छा सोई फल पावे, गुरबाणी सुख पाए। पहरो महला तीजा, दुख विच जमै दुख मरे, दुख विच कार कमाए, गर्भ जोनी विच कदे ना निकले, बिष्टा माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेव ना कीनी, हर का नाम ना पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिलै वड़ियाई, जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटै ता फल पाए, सच करनी सुखसार, से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार। तिन किरण मिलै ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया, नानक तिन किरण पूरे भाग पाई, जिनी राम नाम चित लाया। पहरो महला तीजा, शब्द विचारे सोजन साचा, जिन कै हृदय साचा सोई, साची भगत करै दिन राती, ता तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, बिन सतगुर सेवे भगत न पाई, पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ।
ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ ਲਾਭ ਮੰਗੈ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦੂ ਹੋਈ ਜਮਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ਸਰੀ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਤ ਖੋਈ ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਭਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ ਪੜ ਪੜ ਲੂਜੈ ਬਾਦ ਵਖਾਣੈ ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਏ ਉਦਰ ਨੈ ਸਾਣ ਨਾ ਭਰੀਐ ਕਬਹੂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਨ ਪਚਾਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਮ ਰਸ ਰਾਤੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਦੁਬਦਾ ਮਨ ਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤ੍ਰ ਪਤਾਤੇ ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦੈ ਲਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੀਆ ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ਤਿਸਨੋ ਕਿਹੋ ਕਹੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੈ ਸਭ ਤੁਦੈ ਮਹੇ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਭ ਆਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਤਜੁਗ ਪਰਮਹੰਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੈ ਮਾਨਸ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਵਿਣਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਲਿਖੈ ਜਨ ਸਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਾਈ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਗੁਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਘਰ ਦਰ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਰੰਗ ਸੋ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਹੈ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਏ

प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पुजावन हार रहाओ। सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है होरथ सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए। पैरव महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जम सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई। मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरे फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर शांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार। ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाले राम नाम वड़ियाई। पहरो महला तीजा हम मैं माया मोहे खवाया दुख हटे दुख आए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए। मन मुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदन लागे प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमाने कूड़ होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए। हर हर नाम हृदय सदवसिया पाया गुणी निदान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड़ियाई नानक नाम समाए। पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे सासना ते बालको गम ना करे रहाओ। माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे। प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया। हाथ खड़ग करताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार। खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हम बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे। पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया। रहाओ अंधन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई। मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करे दुष्ट दै चढ़ाया। प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा दैते काल नेड़ाया। अपनी पैज आपे राखे भगता दे वड़ियाई नानक हर नाक्ष नखी बिदारिया अंधे दर की खबर ना पाई।
राग पहराओ महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर शब्दी हर पज सुरत समायण मेरे मनो हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमती ले राम रसायण गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायण सब किले विख पाप गए गावायण तू आपे करता सृष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दाद दसायण भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मेलो गुरपूरा सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी हम मूर्ख कवहर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी भैरव महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली हर अगमा गोचर गुर अगम दिखाली विचकाया नगर लद्दा हर पाली हम बारक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली भैरव महला चौथा सब कर तेरे तू सबना माहे तुझते बाहर कोई ना है हर सुखदाता मेरे मन जाप हाँ तुद सालाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाओ जै जै देखा तै हर प्रभ सोए सब तेरे वस दूजा अवर न कोए जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोए न जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर भैरो महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूर्त जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक भाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधसूदन जपिए अवतार देही नगर तस्कर पंच धातु गुरसब्दी हर का डे मार रहाओ जिनका हर सेती मन मान्या तिन कारज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूरत ता किश कीजै जे किश होवै हर बाहर जो किश करै सोई पल होसी हर त्यावो अंदन नाम मुरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओ पूछना किसै करे बीचार नानक सो प्रभसदा त्याई है जिन मेलिया सतगुर कृपा तार भैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जप्यागत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिकसै खिन खिन तिनको हों बलिहारी हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास की जय पनिहारी रहाओ तिन मत यूतम तिन पत यूतम जिन हृदय वस्या बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया ते हर दर गए कर डे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावै तिन ना काटे सृजनहारी हर आप बोलावै आपे बोलै हर आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिलै सो तुद मिलसी जन नानक आए जंत विचारी भैरो महला चौथा सतसंगत साई हर तेरी जत हर जित हर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्रेवै नित चरणे
जग जीवन हर त्याय तरने अनेक संख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इत गणने रहाओ। गुर सिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सो कहने। तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगमो नाम हर तेरे विच भगता हर तरने नानक जन पाया मत गुरमत।

संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन कोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहरे आयो ताए, अहेरा पायो कर कै गाए। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कह कर केवल नाम। पैरो महला पंजवा, जे सौ लोच लोच खावाया, सागत हर हर चीत न आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पी गए अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दैदिस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गहना पाया, त्यों साकत ते को ना बरासाया। तित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रबणत बनाया। पैरो महला पंजवा, जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जिनै उपाय तिसको पीर। गुरु गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल दीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत तन नह पारना, तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवा, आगे दय पाछे नारायण। मध पाग हर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र साउण। सुख सहजानंद ग्रह पाउण। रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए, नानक प्रभ शरणागत आए। पैरो महला पंजवा, कोट मनोरथ आवे हाथ। जब मार कै संगी पांथ, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम। जो सिमरै तिसकी गत होवै, पीवत बहुण ना जोन प्रमाम। रहाओ पूजा जाप ताप इशनान, सिमरत नाम पै नह काम। राजमाल साधन दरबार, सिमरत नाम पूर्ण आचार। नानक दास एहो किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। पैरो महला पंजवा, लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम जन आप ते आया, याना पापी ओ आप चाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला, निंद का माथा यहां हुआ काला। जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास, मलेश पापी पचिया पया निराश।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग में कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरों महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंदक को अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितविय तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पे सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पैरो महला पंजवा, निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, बिक संचय नित डरता फिरे, है निकट यार भेद ना पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कह, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखे पर ग्रह जाए, दर भिरे मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जाने आ, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड, अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
अंतर बाहर निकटे सोए जन नानक आवै ना जावे कोए पैरो महला पंजवा जिस तू राख तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोटो पाव चितवत है प्राणी सो होवे जे करे चोज विडाणी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार रहाओ जिन सेव्या निरपौ सुखदाता तिन पौ दूर किया एक पराता जो तू करे सोई फन होए मारे ना राखे दूजा कोए क्या तू सोचे मानस बाण अंतरजामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सबके जाने सृजनहार जैसी ऊपर नजर करे करतार तेह जन के सब का इसवार तिसका राखा एको सोए जन नानक पढ़ ना सके कोए पैरो महला पंजवा तौकड़िया जे होवै बाहर तौकड़िया जे विसरै नर हर तौकड़िया जे दूजा पाए क्या कड़िया जा रहा समाए माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नामै भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ तौकड़िया जे दूजा करता तौकड़िया जे अन्याय को मरता तौकड़िया जे कह जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौ कड़िया जे किश होए तिंगाने तौ कड़िया जे भूल रजाने गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पैज नानक सरनाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठे कैसे गवनहारी जील बिना कैसे बजर बाप नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहाँ को बगता बिन श्रवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को पेख है नाम बिना नर कहीं ना लिख है बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना ना बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे ना बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कखनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पैरो महला पंजवा हम मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रसयानो बासन रोग पवर बिनसानो हेत्रो का सगल संसारा त्रिबद रोग मैं बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जरमे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कतै ना जावे पार ब्रह्म जसकीनी दया बहां पकड़ रोगों कढ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख पंज चीत आवे ता सरदा पूरी चीत आवे ता कबै ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता स्था निहाल चीत आवे ता सद धनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणे चीत आवे ता चुकी काणे चीत आवै ता सहज कर पाया चीत आवै ता सुन समाया
चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवां। बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नी करवासी हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल। सोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रटे मांझ पिता पुत्र अल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंग लीने पैरो महला पंजवां। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवै ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सबना केराया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला नानक दास देख पय निहाला। पैरो महला पंजवां सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबसका दाता सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है सतगुर मेरा मार जीवाल है सतगुर मेरे की वड़ियाई प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीबाण सतगुर कहो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद पैरो महला पंजवां। नाम लैत मन प्रगट पया नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अतमूड सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार अवर कर्म लोकै पतियार पैरो महला पंजवां। नमस्कार ता कौ लख बार एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप होए आनंद न व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृष्ट दुखडेरा टहै अमृत नाम शीतल मन गहै। अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार कहो नानक जिस आप दयार पैरो महला पंजवां।
मोहे दुहागन आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुखर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटिया देर भय प्रगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद जां कहो प्रगट भय गोपाल तां कै दर्शन उसदा निहाल सर्ब गुणा तां कै बहुत निदान जां को सतगुर दियो नाम जां कहो भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रभ पाए तां की रेन बिरला को पाए पैरो महला पंजवां चितवत पाप ना आल के आवै बेसवा भजत किशने शरमावै सारो दिन समझूरी करै हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै माया लग पुलो संसार वा पुलाया पुलावन हारै राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करै कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मंत आवे करने हारना जी मैं आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत ना कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हरे आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया पैरों महला पंजवां अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साध शब्द हृदय मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो नित पाई तार ले सागर संसार रहाओ जिन कौ लिखिया हर एहो निदान से जंतर गै पावै मान सुख सहज आनंद गुण गाओ अगै मिलै निथावे थाओ जुगै जुगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लय सो लागै जन्म जन्म का सोया जागै तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जंत सब तेरे हाथ नानक प्रभ सदी साथ पैरो महला पंजवां नाम हमारे अंतरजामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रव्या हर नाम सतगुर पूरे कीनो दान नाम रतन मेरे भंडार अगम्य मोला अपरे अपार रहाओ नाम हमारा निचल तनी नाम की महिमा सब में बनी नाम हमारा है पूरा साहो नाम हमारा बेपरवाहो नाम हमारा भोजन पाओ नाम हमारा मन का सुहाओ नाम ना विसरै संत प्रसाद नाम लै तो अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई गुर कृपा ते नाम स्यों

दुलब देह आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम। कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी। पैरव महला पंजवा, सब ते उच्चा जाका नाओ। सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस मृत सगला दुख जाए। सर्व सुख वसै मन आए, सिमर मना तू साचा सोए। हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ। पुरख निरंजन सृजनहार, जी जंत देवे आहार। कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार। साचा तन साची वड्याई, गुर पूरे ते निश्चल मत पाई। कर कृपा जिस राखनहारा, ताका सगल मिटै अंधियारा। पार ब्रह्म स्यों लागो ध्यान, पूर्ण पूर रहो निर्वाण। भ्रम पाओ मेट मिले गोपाल, नानक कहो गुर पहे दयाल। पैरो महला पंजवा, जिस सिमरत मन होए प्रगास। मिटै कलेस सुख सहज निवास, तिसै प्राप्त जिस प्रभ दे। पूरे गुर की पाए सेव, सर्व सुखां प्रभ तेरो नाओ। आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ, जो इच्छा सोई फल पाए। हर का नाम मन वसाए, आवन जान रहे हर त्याए। भगत पाए प्रभ की लिवलाए, बिन से काम क्रोध अहंकार। टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की टेक रह दिन रात। पार ब्रह्म करे जिस दात, कर्ण करावन हार स्वामी। सगल कटा के अंतरयामी, कर कृपा अपनी सेवा लाए। नानक दास तेरी शरण आए। पैरव महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवै। नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। हर सिमरन शाड परम गत चाहै, मूल बिना साखा कत्या है। गुर गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारै। बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ। तीर्थ नाए कहां सोच सैल, मन को व्यापै हूं मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बुझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरे दुख। काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मैले दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक कौसदा प्रतपार पगजना के सास निहार मानस की कहो केतक बात जमते राखे दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल दीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गह लीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास।

सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत। सो वडभागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरह संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पिछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिदमाहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना। आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने। पैरो महला पंजवा, नाम लै तो किश बिग ना लागे, नाम सुन तो जम दूरों भागे। नाम लै तो सब दुख है नास, नाम जब तो हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमर तो किस चाख ना जो है, हर सिमर तो दैत देव ना पुहै। हर सिमर तो मोह मान ना बदै, हर सिमर तो गर्भ जो ना रुदै। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया केला। जात अजात जपै जन कोए, जो जापै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभ कृपा तार, सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवा, आपे सास्ते आपे बेद, आपे कटकट जाने भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ, करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ। दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाओ। आपे वन त्रिण त्र पवन सार, जाकै सूत परोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्बाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावै नानक साध संग। मुकत भुगत जुगत वस जाकै, ऊणा नाही किस जनता कै। कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन। पहरो महला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद। अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे। पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाए। कर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ। तन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल। अपने दास कौ दे राखे हाथ, निमख ना छोड़ सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए। मात पिता सुतबंद नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण। तिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पहरो महला पंजवा, पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम। सगल ब्याद मिटी त्रिह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावै, तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभमान। ऐसे संत भेटै वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान।

नाव मेरे बंध पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दस दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचे हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारिंग पानी। अब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख बिचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसे बुधसार, तह तुम मिलके करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पदू

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे। सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदाए, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सद बोलंता, सर्व जिया को प्रावधान देता रहा। अंतर देव न जाने अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव। जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे, उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई, ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भक्त है सदा सुखाले। जल में मीन माया के बेदे, दीपक पता

आई। रहाओ पंखी मृग माया मैराते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया मैं पेला, सिद्ध चौरासी माया मैं खेला, छे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया मैं सूता, माया मैं काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया मैं राता, बंतर जीते अर सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया मैं परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तार तेव, कह कबीर जैसे उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवार आए, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ, जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूल ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन राय, जीतो बूढ़े हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सत्तर सह सलाह रह जाके, सवा लाख पै काम व्रता के, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजरस दूर मैल को पावे, रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिर दीवाना, बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई, उन पी पिस्त कनेरी पाई, दिल खल हल जाके जर्द रूबानी, छोड़क तेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हमसरा पिखारी, देव जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना, पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहां, ना जानो बैकुंठ है कहां, रहाओ आप आपका मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोटियार तेवर खाई, रहाओ पांच पचीस मोह मद मत सर, आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रगराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी, पापन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मनमा वासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबोध कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गट पीतर, एवं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे परजाली, एक चोट से जाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दो दरवाजा, साध संगत गुर की कृपा ते, पकड़ो गढ़ को राजा, भगवत पीर सगत स्मरण की, कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर, राज लियो अबनासी, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर करे कबीर, मन ना डिगे तन काहे कौ डराए, चरण कमल चित रहो समाए, रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ, पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास, जामै जोत करे प्रगास, बिजली चमके होए आनंद, जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद, एहो जियो राम नाम लिव लागे, जरा मरण छूटे परम भागे, रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत, हमें गावन गावे गीत, अनहद शब्द होत चुनकार, जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया शांति त्रे खंडा, आगम्या गोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावे को तरनी तरमंत,
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास, द्वादश दाल अभ्यंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत, अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास, उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद, सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान, सो हंस सो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप, अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइये गुर की साम, टारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज में रहो समाए, मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए, जोत मंत्र मन अस्त्र करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम, राहो कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक, नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार, कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थरे, समुंद कोट जा कै पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार, कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे, छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार, लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम असंख कोटियन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम दे हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम दे हो ना कै बिना, ना सोहै बत्ती सलखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए ना मैं दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूम पै आर ना पावै। पंत नाम दे एक नाम निस्तारै, जे गुरमिलै ते पार उतारै। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत्यानाज, त्रिखावंत जल से ती काज। जैसी मूड कुटम परायण, वैसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहि सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहो ना टूट सो रया समाए, नामे चित लाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसे ती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो काल है तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कार्य अग्ने माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखे जाए, मार्ग छोड़या मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के पर खारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एहो बीचार, इन बित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी। पूत प्रहलाद कया नहीं मानै, तिन तौ औरै ठानी।
दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह उद कनेरी गिरताल जल ज्वाला पह राखे ओ राजा राम माया फेरी काढ़ खड़ग काल पह कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राख पीत पितांबर त्रिपवन तनी थंब माहे हर पाख हर नाकसो जिन नख बिदारियो सुर नर किए सनाथा कह नाम देव हम नर हर त्यावै राम अप है पददाता सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कमा नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला रहाओ बिस्मिल गऊ देहो जी आए नातर गर्दन मारो उठाए बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवै कोए मेरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए बादशाहो चढ़े अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे ना मैं की माए छोड़ राम की ना पजा खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट ना माय उबरे हर की ओट काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान बादशाह बेनती सुने हो नमे सर पर सोना ले हो माल ले हो तो दोजक परो तीन छोड़ दुनिया को परो पावो बेड़ी हाथों तालो नामा गावे गुण गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात कड़ी जा बीती सुनी अजो ना आयो त्रिपवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गर चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कह ता तरन एक ओडी करो कह ता लेकर ऊपर तरो कह ता मुई गऊ देव जी आए सब कोई देखे पति आए नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल दूधे दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह हो महल में जाए औकट की कट लगी आए काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए नामा कहे सुनो बादशाह एहो किश पतिया मुझे दिखाए इस पतिया कह परवान साच सील चलो सुल्तान नाम देओ सब रया समाए मिल हिंदू सब नामे पै जाए जाओ अब की बार ना जीवै गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भगत जनाले उधरिया पार सगल कलेस निंदक पया खेद नामे नारायण नाही भेद कर दूजा जाओ गुरदेव ता मिले मुरार जाओ गुरदेव ता उतरै पार जाओ गुरदेव ता बैकुंठ तरै जाओ गुरदेव ता जीवत मरै सत सत सत सत सत गुरदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव रहाओ जौ गुरदेव ता नाम दृढ़ावै जौ गुरदेव ना दे दस्तावै जौ गुरदेव

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समट अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस। हर भगतहीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निगट पेख प्रभ करण हार, ईत ऊत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरण नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवे हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवे नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवे, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित रातो हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ

तुझै पछाण है, तेरिया भगता कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे, जिसनों तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पाना, कहो नानक टह पया द्वारा, रख ले वो मुगद्या जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल ना बुझै अपना सूजै, भरम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभ ते होवै ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी, आवरियो पाओ ना को सूजै, नानक तरियै गुरबचनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पीतर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग तिहार है कछु ना चल है, ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीर्त और अनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण, एक पुरख भगवानो, बसंत महल

जोगी जंगम अर सन्यासो सभी पर डारिये फास। जेह जे अर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजै नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटियो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल विनाशी मन ते ने सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निद सो गोविंद गुण गावै कहो नानके बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यो परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन दारा संपत गृह कै संग न चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाई ताहे मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किश कीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्या सनिवास। गुर शब्दी बिखत्या सनिवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिख माए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवरतार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यो फासस काम हार कड़बंधन बांध्यो सी समार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। ता कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले न जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਤਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावा।

रहे अपहगे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अगन के लूठे। अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला, रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकाओ तेरा पार ना पाया बीठला, हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा, नामा कह हों तार पी ना जाना, मोको बहां दे बीठला, सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती, पीछे तिनका लेकर हागती, जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती, सर तोवन चाली लाडली, रहाओ तो भी तो वह बिरा बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पंत नाम देव रम रहे अपने भगत पर कर दया, बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तुझे सुजनता कशु नाहे, पहरावा देखे उपजाहे, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काए गर्भ बावली, जैसे पांदव खूब राज, तू तिस्ते खरी उतावली, रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस, आप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुवार, पुत्र कलत्र का करे हंकार, उठाकर लेखा मंगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकार है पियो पियो, साधु की जौ लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल, इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, और किसी के

जैसा करै कहावै तैसा, ऐसी बनी जरूरत होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श में लाया न फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता क्षमा जप माली ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसवी दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाणै। द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर बदे मारी है नानक हर पाया, श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरद ना जाननी। मन अंधे उंधे कवल, दिसन खरे करूप। एक कह जान कहया बुजन, ते नर सूट स्वरूप। एक ना नाद ना बेद ना गी रस, रस कस ना जान अंत। एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत। नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया। हर अर्थ जो खर्च दे, देंदे सुख पाया। जो हर नाम ते आए दे, तिन तोट ना आया। गुरमुखा नदरी आमदा, माया सुट पाया। नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन सेवट भागी, सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी। ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणत सेव ना हो वई, कीता थाए ना पाए। शब्द साधना आयो, सच ना लगो पाओ। सतगुर प्यारा ना लगे मन ठिया वह जाए। जे एक विख अगाह भरे, ता दस विखा पिछाह जाए। सतगुर की सेवा चाकरी, जे चले सतगुर पाए। आप गवाए सतगुरु नो मिले, सहजे रह समाए। नानक तिन्ना नाम ना

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्पयो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ, आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखे रू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ, तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। लार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वर आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बुंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार पई सुहागण, मन तन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग पई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हो मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया, मन भावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजै बादी बिरसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उरतारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें जिसमें नाम निरंजन हंस। दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस साचै नाए। मलार महला पहला, दुख मोहरा मारन हर नाम। सिला संतोख पीसन हथ दान, नित नित लेहो ना।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाय ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जै जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सोलैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बोजोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चरण।

आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत बहुबिद रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हरे दे अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसम बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग। कन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल। साध जना कै चरण लाग नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवा कान गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहै बिन पिर नींद न पाई। सूर चरै प्रयो देखै नैनी निम निम लागै पाई। फिर भावै प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई। रहाओ सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सह सुभाई। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरै बिलप करे बिल लाई। कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई। खिन तिल रह न सकै पल जन बिन मरण जीवन तिस्ताई। तन वांडी पिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई। गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रती हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई। प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। सब मैं जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई। गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही। अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच डर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे। हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा। रहाओ जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई। जेती है तेती तुझ ही ते तुम सर्यवर ना कोई।
जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चिहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म रह खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन हेम पय सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्ब जिया दयाला तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै बदक कर्म कमावै सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची निर्गुण देहे साच बिन काची मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ प्रेस्यों प्रीत ना उल्टे कबहू जोते पावै साई। नींद गई हो मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई। लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रिजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। बलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल पर नाल डूंगरू चौगड़ पाताल सागर शीतल गुर शब्द विचार। मार्ग मुक्ता हो मैं मार मैं अंधले नावे की जोत नाम आधार चला गुर कै पै भेत। रहाओ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कै तकिय साचै तान नाम समार सरूड़ी बाण थै पावे दरलै स्पिराण। ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार। जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै। करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मैं नाम छडाए जे गुर शब्द सिंपै। एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मुख द्वार। नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तरत सुहावी कट कट जोत समाणी। कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी। जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए। हुक्मे बांधा कार कमाए एक शब्द राचै सच समाए। चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं। सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं। जामन मरना दिसै सिर उबो खुदया निंद्रा कालं। नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं। मलार महला पहला
मरण मुकत गत सार ना जाने, कंठे कंठे बैठी गुरशब्द पछाने। तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जा चैर दै समाल। रहाओ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही। सर्व जी किए प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी। जब गल फास पड़ी अत भारी, ऊंडना सांकै पंख पसारी। रस चूगै मन मुख गावार, फाती छूटै गुण ज्ञान विचार। सतगुर सेव टूटै जमकाल, हृदय साचा शब्द संभाल। गुरमत साची

अमृत पी जई, हर भगति असनेह गुरमुख की जई। सलोक महला तीजा, गुरमुख मलार राग जो करै, तिन मन तन शीतल होए, गुरसबदी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मन तन सच्चा सच मन, सच्चे सच्ची सोए, अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कल युग में कोर अंधार है, मन मुख राहो ना कोए, सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा, इंद वरसै कर दया, लोका मन उपजै चाओ, जिसकै हुक्म इंद वरसदा, तिसकै सद बलिहार है जाओ। गुरमुख शब्द संभालीऐ, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते सहजन निर्मले, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ। पौड़ी पूरा सतगुर से पूरा पाया, पूरा कर्म ते आए, पूरा शब्द मन वसाया, पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया। शब्द मरे मन मार, तन जने दी माया, दर सच्चे सच्चियार सच्चा आया, पुछ न सके कोए जा खसमै पाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया। श्लोक महला पहला, कुल्हा देंदे बावले, लेंदे वड्डे नलज, चूहा खड न मावई तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाहे। फसल अहाड़ी एक नाम, सामनी सच नाओ, मैं महदूद लिखाया, खसमै कैदर जाए, दुनिया के दर केतड़े केते आवे जाए।

पत नमस्कार है ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कवन गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे लाख लाख लाख कई कोरे को है ऐसो विचार विषम विषम विषम ही पही है लाल गुलाल रंगार कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गुंगा मुस्कार कानड़ा महला पंजवा ना जानी संतन प्रभ ने आन ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ घट घट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मने प्रगास भयो भ्रम नास्यो मंत्र दियो गुरकान करत रहे करतग करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कौ हरदान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कौ कई केत ऐसो जन।

नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेता है, सोग नहीं सदा हर की है रे, छोड़ नहीं किस लेता है। कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमत है, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत पए तेह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गह रहे अटकाए, अनक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम हो माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग बिनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवनो, नाम हमारे प्राणाधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इशनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल बिखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ ला

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुर मेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आहयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन भेट मिटाहयो भयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिन सह मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रहन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रपरसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तहावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जने अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरी आ रहाओ अहं मत आन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाग गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोयत खोयत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराद गुर सतगो चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभां पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निधान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
किछ संग ना चालै लाख करोरै, प्रभ जी को नाम अंत पकरोरै, मनसा मान।

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरै, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगह प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हमें मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम भज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तै राखे नाम साथई। जन तेरा जस गावे हर हर, प्रभ हर जप्यो जगंग नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई, कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहे एक तल नहीं मानना है रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सके, चरणी आए पवे हर जन, जा कहो राख ले मेरा स्वामी, ता कहो समत दे पै कान, ता कहो कोई अपर ना सके, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चो जो विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन को आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान, तुम हर दाते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान, जन नानक को हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान, कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे, हरे आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे, शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावन पार परे, भक्त जना की पैज हर राख, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यो, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यो काज ना कछुए, हर बूंद चात्रक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचे जाचे, सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, भावनिया सो पाइये, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइये, नानक तत तत स्यो मिलिये, हीरे हीर बिधाइये। कल्याण महला पंजवा,
मेरे लालन की शोभा, साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहार है, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे मान हर हर मान। नैन बैन श्रवण सुनिए, अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत योत दह दिस रवेओ, मेरत ने समान। जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। साध संग प्रम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया नंद बेद, कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत, तै पाप खंडली। जोग जुगत ज्ञान भुगत, सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कछु दुख ना डंडली। कल्याण महल

रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन करत रीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर यत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकीने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साधु।

जय परस न परस पय साधु जन जन हर भगवान दखी जय साक्त सूत बहु गुरु जी भरिया क्यों कर तंत नी जय तंत सूत किशनिक सह नाही साक्त संग ना की जय सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय अंतर रतन जिवे हर माणक गुर कृपा ते लीजै मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी हम क्यों कर मिले मिली जय नानक मेल मिलाए गुरपूरा जन को पूर्ण दी जय कल्याण महला चौथा रामा राम रामो राम रवि जय साधु साधु साजनी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय कृपा कृपा कर साध मिलावो जग थमन कौ थम दी जय बसदा तला तला सभी ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अति उत्तम अति उत्तम होवो सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सख्त भरी जय मैन दंत निकसै गुरबचनी सार चब चब हर रस पी जय राम नाम अन गुरो बहु किया गुर साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम बिसीरन की है हर सगल भवन जस दी जय साधु साधु साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी।

हर हर आप धरियो हर जन मैं जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बहदे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपुरे हर प्रभ लब्बा रहाओ राम नाम रस राम रसायन। रस पिया गुरमत रसबा लोह मनूर कंचन मिल संगत। हर उर तारियो गुर हरबा हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने। पुत कलत मोहे लुभबा तिन पग संतन सेवे कभू। ते मनमुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम परे हार तुम सरन बा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी। जन नानक दास तुम नवा शकायक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान हर दरगह पावे मान। जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अड़सठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान। जप मन परमेश्वर प्रदान खिन खोवे पाप कोटान। मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा विभास। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा तरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते हर सोग ते रह निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहा सखाई जै कोई ना होवै कोट अपराध एक खिन मैं तोवै। दात करै नहीं पछोतावै एका बख्श फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवा। प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तिस लोभा। नाम तेरा जन कै पंडार गुण गावे प्रभ दर्स प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै न जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा। गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइय हर सिमरन जिस गुर ते पाइय। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया। हलत पलत जिन गुरै सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी गुरपुरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव वड्डे पाग पाइए हर सेव। प्रभाती महला पंजवा। सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाया। हम बारक सरन प्रभ दयाल
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसे खिन पीतर पय कृपाल गुसाई सासा स्पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुर कै बल जाई। अगमै गोचर बेअंत स्वामी ता का अंत ना पाईए लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सोभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम स्यों लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेश ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बल जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई है वडभागी जिस मिलते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल घटा के अंतर जामी आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवां कर कृपा अपने प्रभ की है हर का नाम जपन कौ दिए आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरणी लाग जो गुर कह सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यो लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यो मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निद गाई है कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवां से धनवंत से सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपुरा पाईए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार प्रभाती महला पंजवां गुरपुरा पूरी तां की कला गुर का शब्द सदा सद अटला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब तां का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावै मुक्तो साधु तुहरी नावै रहाओ। गुर प्रसादी उतरे पार पौ परम बिन से बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपै साध परे हर सरना आनंद सहज रसूक नेरे दुश्मन दुख ना आवै नेरे गुरपुरे अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिख सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले गुरपुरे प्रभ स्यो लै मेले जन्म मरण दुख पहा काटिया कहो नान गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवां सतगुर पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ सूड सुजान गुरपुरा पाईए वडभागी दर्शन कौ जाइए कुर्बान रहाओ। किलबिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग साध संग होवा प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ
ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੇ ਆਚਾਰ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵੇਂ, ਲਖ 84 ਜੋਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਈਹਾਂ ਉਹਾਂ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰੇ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਧਰਿਆ ਹਾਥ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸ। ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਪੇਖੈ ਭਰਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਨੇ ਰਹਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਰਸ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਸਬਦੇ ਕੀ ਨਰਦੈ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਇਆ ਰਹਾਓ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਮਨ ਬੂਠੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ।

अंत बार संग तेरा यह एक जात है बिखिया बिख ज्यों बिसार प्रभ को जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिख्यान से अत लुभान मत नान फेरी रहाओ मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगहो परी बेरी नानक जन कह पुकार सुपने ज्यों जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी जय जावंती महला नावा बीत जह है बीत जह है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तौ पहुंचो आन कहां जह पाज रे रहाओ अस्थिर जो मान

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान पंगन सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाह तन्यमृता आवद गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार गए विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन जितते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या समरंत नानक राम राम नाम नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन नच राग रतन कंठं नह चंचल चतर चतर पाग उद्यम लभद्यंग माया नानक साह संग खल पंडित कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन कुकरै सुकरै गर्भदय काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन नच दुर्लभं धनंग रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन नच दुर्लभं भोजनंग व्यंजनंग नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बंता बिलास नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतर चंचल दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभद्यं सा संकृपा प्रभं जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणं गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते बिखिया पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन दुखं पयंत सुखियं पै पी पंत निर्भय थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुरै सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममंग करता नानक लेप शेप ना लिप्या ते नह शीतलंग चंद्र देव नह शीतलंग बामन चंदन नह शीतलंग शीतुरुतेण नानक शीतलंग सास्वजन मंत्रंग राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित उपदेशं समित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहर तत्रगते संसार नानक सोग हरखं व्यापते छलंग शिद्रंग कोट बेगनं अपराधं किल बखमलं परम मोहं मान अपमानं मदंग माया व्यापतं मृत्यो जन्म प्रमंत नरक अनक उपावं न सिद्ध्यते निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रत
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमंग साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतंग सोगहरखंग पै खीणंत निर्भव तय अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग, हे अजित सूर संग्रामंग अत बल ना बो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यंग पशपंखी बेमोहन है, हर करण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी परमावण है, चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण है, तव पह विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधंग कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवंग वस्यंग क्रोत निरत्यंग क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जमदूत है, तव संगे अदमंग नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं, अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यंग असाज्यंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है, हे जन्म मरण मूलं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रंग दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण है, वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन है, सास संगीन तरणंग नानक महासागर पै दुत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मंग हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियंग सासंग शरीर तारणंग, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैश जंत जठर रोगण तेन कला अस्थम्भंग सरोवरंग नानक नहश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणंग सर्वत्र जीवन लब्ध्यंग संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतण, मस्कंग पगनंत सैलंग कर्दमंग तरंत पपील कै सागरंग लंघंत पिंगंग तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणंग जथा विपरा अमरहीणंग जथा राजन आवदहीणंग जथा सूरा, नानक धर्महीणंग तथा वैष्णव है, न शंखंग न चक्रंग न गदा न श्यामंग आश्चर्य रूपंग अरहंत जन्मंग, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद है, बसंत साध हृदयंग अचत बुझंत नानक वडभागी है, उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खर है, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणंग अहू फांस दीखण कठन है, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन है,
ਪਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖਯੰਗ ਹਿਰਦਯੰਗ ਭੂਮ ਵੈਰਣੈ ਨੇਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸਮੰਤ ਸਵਜਨੈ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯੈ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ ਅਵਰਤ ਏਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨੈ ਹੇ ਪਪੀਲਕਾ ਗ੍ਰਹਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰਗ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰ ਤਾ ਮੇਰੰ ਸਹਿਕੰ ਤਾ ਹਰਿਯੰ ਬੂਡੰ ਤਾ ਤਰਿਯੰ ਊਣੰ ਤਾ ਭਰਿਯੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰ ਬ੍ਰਹਮਣੈ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਣੈ ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਭ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਓ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੁ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਦਰਣੰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰ ਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੈ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਪਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੈ ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੋਖਿਆ ਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਮੈ ਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨੈ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣੈ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬੜ ਕਰਮਣੈ ਅਰਹੰਤਾ ਜਨ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਜੇਣ ਝੜੀਅੰ ਨਹਿ ਜੜੀਅੰ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਸ ਰੋ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਬੰਤੰ ਬੜ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੈ ਵਿਆਪਣੈ ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨੈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣੈ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣੈ ਜੇਣ ਮੱਧ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦੈ ਨਾਨਕ ਲਬਧਿਅੰ ਬਣ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਲਬਧੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤੋ ਬਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲ ਤੋਲ ਅਮਿੱਤੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿੱਤੋ ਅਬਜ ਸੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰੈ ਸਿਮਰਤਾ ਬਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣੈ
प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवनंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहोन पुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग व्याद्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण जाथ कथ रमणंग सरणंग सर्वत्र जियण तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग कुलै समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग सिमरणंग गोविंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं सुखैन बैन रत्नं रचनं कसुंबरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब है के साजिया सोलह किए सिंगार के अंजन पाजिया जे करे आवे कंत ता सब कुछ पाई है हर हा कंत है बाज सिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड भागने तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागने हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पय दयाल ता पूरा पाईया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पय दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जे सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेस पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग तां दर्श समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया बदो पुरख बिधातै तां तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां
नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर। चात्रक चित सो चित सो साजन चाहिए, जे संग लागे प्राण तिसै को वाही है। बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे, हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे। मित का चेता अनूप मराम ना जानी है, गाहक गुनिया पार सो तत् पछानी है। चित चित समाए ता होवे रंग घना, हर हां चंचल चोरै मार ता पावे सच तना। सुपने उबी पई गहयो की ना अंचला, सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला। खोजो ताके चरण कहो कत पाई है, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है। नैन ना देखे साध से नैन बिहालिया, करन ना सुन ही नाद करन मुंद कालिया। रसना जपे नाम तिल तिल कर कटी है, हर हां जब बिसर गोबिंद राय दिनो दिन कटी है। पंकज फाथे पंक महामद गुम्फिया, अंग संग उर जाए बिसर ते सुम्फिया। है कु ऐसा मीत जे तोरे बिखम गांठ, नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ। तावो दसा अनेक प्रेम प्रभ कारणे, पंच सतावै दूत कवन बिद मारणे। तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है, हर हां महा बिखादी कहात पूर्ण गुर पाई है। सदगुर कीनी दात मूल नान खुट्टई, खावो पुंचो सब गुरमुख छुट्टई। अमृत नाम निदान दिता तो सहार, नानक सदा अराध कदे ना जाहे मर। जिथे जाए भगत सो थान सुहावना, सगले होए सुख हर नाम ते आवना। जी करन जयकार निंदक मोए पच, साजन मन आनंद नानक नाम जप। पावन पदत पुनीत कतै नहीं सेवी है, झूठे रंग खुआर कहां लग खेवी है। हर चंदौरी पेख काहे सुख मान्या, हर हां हां बलिहारी तिन जे दर गै जान्या। कीने कर्म अनेक गवार बेकार कहन, महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन। फिर तो गर्भ गुबार मरण न जानई, हर हां हर चंदौरी पेख काहे सच मानई। जिसकी पूजै औद तिसै कौन राखई, वैदक अनप्यो पाव कहां लो पाखई। एको चेत गवार काज तेरे आवई, हर हां बिन्ना मैं तनशार बिरथा सब जावई। औखद नाम अपार अमोलक पीजई, मिल मिल खावै संत सगल कौ दीजई। जिसै प्राप्त होए तिसै ही पावणे, हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरिया,

बाद समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जाप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्ब, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूं जाहे। लख काटी ऊंचो कनौ चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड करहा।

जगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठताव ते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी मुसमुसला वह हाट, एक कबीरा नाम सह जिन की नी बारे बाट। कबीर सुख ना एह जोग करे जो बहुत है मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। कबीर तास्यों प्रीत कर जा को ठाकर राम, पंडित राजे पूपती आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजल की कोठरी अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तिन कौ पैस जो निक सजाहे। कबीर यह तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यह तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ मर पीना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पोए ग्रह बौर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सोस है जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैरे कापरे पान सुपारी खाहे, एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जरजरा फूटे शेंक हजार, हरुए हरुए तर गए डूबे जिन सरपार। कबीर हार्ड जर

करते हुए सो होए। कबीर बैसनों की कुकर भली, सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हर ना दुबला, एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिर कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दीपी रतन हरे चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

कबीर माए मुंडोते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए क्या उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राख नार, गधी होए क्या उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी ऊपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामु कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीसगी जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांधो जह जेवरी, तेह मत बंदो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो, सो जाई सैना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो, श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया, बरख भरे सरताल, चात्रक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया, रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतेओ जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक है सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस प्रवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਉ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੁਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਇਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पहला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड़ हीरा किसका बापरा पुजे नरतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबे कौ खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बास बजाई है फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी कौ मान ओ मांग सवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मांडे हाट जब ही पाइए पारखू तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोर बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जब ले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रह निसंक जो जानु निर्दावे रह सो गर इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छड़े संतई जो कोट कमलै असंत मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देह गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेह। जह अन पौत है पह नहीं जह पौत है हर ना है
कहो कबीर विचार क संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या अज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाउ हलाल, दफ्तर लेखा मांगिया तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आप आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम है राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे पूत बसै तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी भूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसे लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक से मार मुहे मुहे खाए। कबीर लेखा देना सुहेला जव दिल सूची होए, ओ साचे दीबान में पल्ला ना पकरे कोए। कबीर धरती अरे आकाश में दोए तू बरी अबद, खर दर्शन संसे परे अर चौरासी सिद्ध। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। कबीर बेकार है चितवते झूठे करते आस, मनोरथ कोई ना पूरे ओ चले उठ निराश। कबीर हर का स्मरण जो करे सुखी सो सुखिया संसार, एत्युत कतै ना डोले जिस राखे सृजनहार। कबीर कहानी पीड़ते सदगुर लिए छड़ाए, परा पूर्बली पावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए, ना हर भजयो ना खत फटयो कल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कूकर भौकना, करंग पिछे उठताए करमी सतगुर पाया जिन्हो लिया छड़ाए। महला पंजवा कबीर धरती साध की।

मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसु के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कनी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो साला ही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते, ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया, औद पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुपिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी, बिरखा सुभ्र फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो, ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो, किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं, कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तुहे तो साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के, ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के, करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे, सत पाखे रविदास। कबीर जाओ ग्रहो करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैराग।

काला मेंढा वेश गुन ही परया मैं फिरा लोक कह दरवेश तत्ती तो इना पल्लवै जे जल टुबी दे फरीदा जोडो हगन रब दी चूरे दी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोलना पीवै उडन संधी डंज हंस उडर कोदरै पया लोक विडारन जाए गहला लोक न जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चल सी थके कवले कल फरीदा इट सराने पोए सवन कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्वी टुटी नगर लज अजरा ईर फरेस्ता कैकर नाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी समन्वी टुटी नगर लज जो सज्जन कोई पार थे से क्यों आवे अज फरीदा बेनिवाजा कुत्या एना पली रीत कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना नवै सो सिर का प्यो तार जो सिर साई ना नवै सो सिर की जय काए कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदै थाए फरीदा किथे तंडे मापिया जिनी तू जने ओहे तैं पासों ओए लद गए तू अजय ना पतीन ओहे फरीदा मन मैदान कर टोए टबे लाए अगै मूल ना आवसी दोजक संधि पाए महला पंजवा फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माए मंदा किसनो आखीऐ जा तिस बिन कोई ना आए फरीदा जे दे नाला कप्या जे गल कप्पै चुख पवनाइती मामले सहनाइती दुख चबण चलण रतन से सुनियर

फरीदा दिल दत्ता इस दुनी स्यों दुनी ना कितै काम मिसल फकीरां गाखड़ी सो पाईए पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहेब संधियां क्या चले तिस नाल इक जागन दे नाल हैन इक ना सुत्यां दे उठाल ढूंढें दिए सुहाग को तौ तनकाई कोर जिन्ना ना सुहागनी तिन्ना चाक ना होर सबर मंज कमान ए सबर का निहुणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन ए वै जा लेन हुन जी खुदाई दै भेत न किसे देन सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करै वद थी वै दरियाओ टुट ना थी वै वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किने चाली है दरवेसा वी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मूह प्री मिलन ताना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हाउ ढूंढें दी सजना सजन मैंड नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वढांस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना पेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरे जित पावे नानका का गो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास एहो तन लहरी गट थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वे सो हों करी जित वस आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जेहबा मणिया।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आप उत्पत एक तू ही एक आना ही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जिही क्या बखान है हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर परै ही ते परै अपरे अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक है निमख तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर मैं आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक है अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जिही क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञान ध्यानं ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कौन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जिही क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी जा को होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जन परसयो से जन मरण दो थे रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त आगाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार हर गुरु नानक जन परसयो दिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजियो संसार आपया पुल ना पुलो रतन नाम अपार कीम न हो पवै अमलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जो ना आए कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के कसरना मिले दान संतरेन जेहे लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठा

देहो दर्श मन चाओ भगत्यो मन ठहरावै बलियो चिराग अंधियार उमै सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म। सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां एको ओंकार सतगुर प्रसाद काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी तावत परमत रह।

वर्ष एक हो फिर ओ किने नौ पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो पहर समाद सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े हो पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे हो काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंत नयावै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा सतगुर से परम पद पायो अबनासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अनपव उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सीर सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस्तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो
जगत उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाईए तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सह शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दिर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जानै को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुक्त विचार अहन इस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सोआ पार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जग भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रि पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾ

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तन लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थपे आओ, हर का नाम अखै निध अपियो, हर नाम अखै निध चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणंग, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कौ, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम से भी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲੱਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਲ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन।

निरंजन जचना गुरप्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर सदा सब दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल युग कब होक को उपावे आत्म प्रगास कहो वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जाको शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे बिद मान गुर आप थप्यो थिर सचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ ताहे कहां परवाह कहूं कि जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खो जंत फिरे अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओ ही ओ। गुर अमरदास करता

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात सचो तखत योग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पाण तू अटल राज या पग दल। तू सतगुर चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुर तुर। आद जुगा ध्यानाद कला तारी त्रे लोवे अगम निगम उदरन जरा जम्मे आरोवे। गुर अमरदास थिर थपे आओ परगामी तारण तारण अग अंतक बदै ना सल कव गुर रामदास तेरी शरण। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरखा चल अबनासी जे सिमरत दुरमत बलनासी। सतगुर चरण कवल रे तारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं। गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो। भगत जोग कौ जय तवार हर जन क्यों पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर असन बसायो। गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो। बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो। अगम्या गोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनप

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससर सुइया किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीटह दे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैणिया पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहो मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछत रन कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नारक दुनिया कैसी होई।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जे तो कौ दियो ता स्यो नेहो ना कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत्को

कट कट में हरजू बसे संतन कहो पुकार, कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जां कह नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तह कट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजह, करण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे।

कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा सरन राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। माया कारण ता वही मूर्ख लोग या जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी यार बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा

मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए ख्वार।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

दुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे।

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावह इंदासन बैठे देवत्यां दरनाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़ न रखी सरे,

रहाओ। हर जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सहि, मिल संगत गुण प्रगास। जिन

जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे

तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर नाम कोई, तू जोग

तिन मुख तिके निकल है जिन मन सच्चा नाउ कर्म मिले ता पाइय नाहीं गली वाओ दुआओ एक आवह एक जाहे उठ।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाउ पूजिए नाउ मनिए अखंड सदा सच सोए।

पाया नाम निदान अंतर हर रसरव रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हौं मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हौं तिन

दत्ते से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर बसै तितकत है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय,

गया पछताए। जिस नदर करे सो उबराए, हर से पील बलाए। देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए। जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

जय पाए। शब्द रतिया सोहा गणी तिन विच हो आहो मैं जाए, तिन विच हो मैं जाए। सदा पिर राव है अपना तिन्ना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर मन पाया जाए। अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे भुख न जाए। आव हो मिल हो सहेली हो मैं पिर दे हो मिलाए। पूरे भाग सतगुर मिले पिर पाया सच समाए।

जे सौ तीर्थ नहाए बहुविध कर्म कमाम दे दूनी मल लागी आए पड़िया मैल न उतरे पूछ हो ज्ञानियां जाए मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए

आप होवा मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए, लागे सहज ध्यान। मेरे मन प्रभु शरणाई पाए, हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइए, सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर है, सिर शाह पातशाह हूं।

प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया बिछड़े सब मह रहया।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीर्थ वर्थ लक

मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

आवार पर्वतगार साला ही है जिस दे चलत अनेक सदा सदा आराध्य एहा मत विशेख मन तन मिठा तिस लगाए जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवां संत जन हो मिल पाई।

पाए, जिनकी तात सहन जानी फिर आवे जाए। अनेक प्रकारी मोहया बहुविध इहो संसार, जिसनो रखे सो रहे सम्रथ पुरख अपार।

या सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना, सच छड जासी लख करोड़। सर पर उठी चलना, छड जासी लख करोड़, लख चौ

रहाउ। जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात, जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शहु सेव तू साहुरड़ै सुख वस, गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगै दुख।

तिसहत्या बहुमन मेरे सर्ब को आधार, गुर के चरण मन माहे त्याए, गुर के चरण मन महे त्याए, छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ, दुख क्लेश ना पौ ब्यापै गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोई, देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौ तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन बसै साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ, श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उदार।

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसर या पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दो

रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा पिता हों जानो नाहीं तेरी कवन जुगता।

पाए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रब रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार।

पास सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाइय सच नाम गुणता।

दरवेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

जाए। नित रवे सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है। कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों तेर दिन रहन विहाए अंक जलाओ तन जा लियो मन तन तन बल जाए अंक

साथ सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाइए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार साच

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

तिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजै हौमै मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भुलाई फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

नानक तरियै सच नाम सिरशाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरै हर नाम रतन वेसाह मनमुख पौजल पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला घर दूजा

पहले सतारह अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

मन मुख पात गवाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया आनंदन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौं दिस जाए, जेता ऊट है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसिय ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना।

सत समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस

आए जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो।

तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया। सब सचो सच वर्तदा, जिस पावे तिसै बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया। कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो। गोपी ने गोवालिया, तुद आपे गोए उठा लिया। हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो। जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिन दूजा भाव चुकाया। जिन सत

विटहु कुर्बान जियो। हर इठे नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

पात बटाया, गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा, हर दिसह हाजर जाहरा, सुन सुन तुझे ध्यान दे तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी, गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी,

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै वणजारिया मित्रा, आम घटै दिन जाए। अंत काल पछता।

सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंड वर भंड हर सोभा होई इहो दान ना रलै रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबूला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबूला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जुग जुग है जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चल सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया

सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाउ सर्ब सठापुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा